0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم।
2: पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से।
1: بسم الله الرحمن الرحيم।
2: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: Say

रहने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और कश्तियों और जहाजों में जो दरिया में लोगों के फायदे के लिए रमा है और मेह में जिसको खुदा आसमान से बरसाता और उससे जमीन को मरने के बाद जिंदा यानी खुश्क हुए पीछे सरसब्ज कर देता है और जमीन पर हर किस्म के जानवर फैलाने में और हवाओं के चलाने में और बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान घिरे रहते हैं, अकलमंदों के लिए खुदा की कुदरत की निशानियां हैं।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
2: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
3: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
4: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید
0: موسیقی چاہے آنسوؤں کا سفر ہو چاہے رقص کی دنیا دل بنے محبت کے آشیانے ہوں یا فراغت کا زمانہ
5: ایکسپلورنگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امارہ ماجد اور میرے ساتھ ہے میری کو ہوسٹ
6: آرجے فہد قریشی
7: السلام علیکم یو آر لسننگ ٹو FM 92.6 UCP کی دنیا آئی ایم نور الہدیٰ

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: कहा जाता है कि फर्द कौमों के मिजाज के आईनादार होते हैं। अफराद अगर जिम्मेदार, कानून की पासदारी करने वाले और नरम ख्वाह होंगे तो कौम भी तहजीब याफ्ता होगी। कौमियत हमारे इत्तेहाद और तंजीम के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये सूबाई, लसानी और नस्ली तासुबात से बालातर होकर अदल और मसावात का प्रचार करती है। इस तरह कौमियत हमसे कुछ इनफरादी जिम्मेदारियों की मुतकाजी है। बहसियत पाकिस्तानी, कौम के हर फर्द पर जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, जो किसी भी पुरअमन मुआशरे के कयाम और फलाह के लिए जरूरी है। एक अच्छा शहरी इल्म रखता है, वो अपने मुल्क, मुआशरे और इंसानियत की बेहतरी के लिए अपना इनफरादी किरदार कैसे अदा कर सकता है। इसीलिए जरूरी है कि रियासत के अफराद जिम्मेदार, कौमी फराइज से आगाह और हुब्बुल वतनी के जज्बे से लबरेज हों, ताकि मुश्किल वक्त में किसी कुर्बानी से दरेग ना करें।

पाकिस्तान को बुरा न कहें, बल्कि इसके वकार को तहफ्फुज अपनी जान से बढ़कर अजीज रखें। पाकिस्तान के लिए अक्सर ये शिकवा जुबाने जदे आम रहा है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। इससे पहले पाकिस्तान हक बजानिब है कि हम इसे जवाब दें कि हमने इसके लिए क्या किया। महज गुर्बत के खौफ से हम अपनी जवानी पाकिस्तान पर खर्च करने की बजाय बाहर के मुल्कों का रुख कर लेते हैं। याद रखिए, अब्दुल सत्तार ईदी भी इसी कौम का फर्जंद है और अब्दुल कदीर खान जैसे सपूत भी इसी मिट्टी की पैदावार हैं, जिन्होंने हुब्बुल वतनी की लाज अपनी सख्त मेहनत और कुर्बानियों से रखी। हमारे गोहरे नायाब शहदा और गुमनाम सिपाही जो अपनी जिंदगी वतन अजीज के लिए वक्फ कर देते हैं, हम पर भी इस जमीन का इतना ही हक है कि हम इसके लिए इन्हीं की तरह ईमानदारी और इखलास से जद्दोजहद करें और इकवामे आलम के लिए अपनी मिसाल कायम करें। आइए अहद करें कि खुद को एक अच्छा शहरी साबित करेंगे और मुल्की सलामती और तरक्की के लिए किसी भी कुर्बानी से दरे

को मतलब कि सिर्फ एक्टिंग से हटा के उन्होंने प्रोड्यूसर को भी एक्सपीरियंस करने का यू नो वो एक उनको मौका मिला और उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है कनेक्ट स्टूडियोज़ के नाम से और you know he's working on it and I think that's very nice ke jab aapko Allah Taala opportunity dete hain to aap uska proper acche tarike se fayda bhi uthate hain aur unke hum career ki baat kare to basically jisme wohi baat hai ki he is a versatile actor you know he bachpan se hi wo kaam kar rahe hain unko matlab like a child artist ke taur pe he appeared in different plays jisme se ek emergency ward tha andhera ujala tha ye dono jo the play ye PTV ke play the to usme unhone as a child artist unhone apna काम बेसिकली शुरू किया था. उसके अलावा जब उन्होंने अपना फिल्म डेब्यू किया 1992 में सजा मूवी में और उन्होंने छोटे छोटे रोल्स फिर टेलीविज़न पे प्ले करना शुरू किया और उसके बाद उनको जो अपना फर्स्ट प्रॉपर लीड रोल मिला वो बूटा जो मैंने पहले जिसका जिक्र किया बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह उसमें उनको मिला और ओवरनाइट कहते हैं ना कि ओवरनाइट स्टार कोई बन जाता है तो उनका डेफिनेटली ये वाला हिसाब था बिकॉज दिस रोल वाज नॉट ओनली एप्रिशिएटेड बट इट वाज अ वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड पार्ट ऑफ हिज लाइफ. और उसके बाद हम लोग और उनके डिफरेंट मतलब के शोज़ में उन्होंने एज अ जज भी डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स को उन्होंने एज अ जज भी अटेंड किया है और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को बेसिकली ड्रामा सीरियल्स के ऊपर जो है उन्होंने कहा कि वो था ना कि बंदा मुसलसल पर ड्रामा सीरियल्स ही करता रहता है तो फिर उन्होंने यही किया कि उनको क्योंकि रिकग्निशन आपको एक स्पेसिफिक आप जब इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो तो आपको समझ आ जाती है कि आपको क्या चीज़ आपको सूट कर एंड वट इज़ द थिंग कि हर किसी को पसंद है तो डेफिनेटली उन्होंने फिर अपने आप को जब जज किया इन सब चीज़ों में तो फिर उनको समझ आ गई कि यू नो ही इज़ बेस्ट मेड फॉर ड्रामा सीरियल्स एंड ही स्टार्टेड डूइंग ड्रामा सीरियल्स और फिर बहुत सारे उन ड्रामा किए जिनमें कैद तन्हाई मैं अब्दुल कादिर हूँ उसके अलावा किस दिन मेरा विवाह होएगा ये एक कॉमेडी ड्रामा था उसके अलावा जख्म टीवी सीरीज़ थी फिर बाबा जानी एक टीवी सीरीज़ थी और एक और इनका जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो रीसेंट टाइम्स में इनका जो ड्रामा है वो बशीर मोमिन गया था और ही प्लेड अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड बड़े गुस्से वाला आदमी बेसिकली उन्होंने उसमें एक्ट किया था एंड इट रियली सूटेड हिज पर्सनालिटी हिज एटीट्यूड या फिर वही बात है कि जब एक अच्छा एक्टर होता है तो वो रोल में अपने आप को प्रॉपर तरीके से ढाल लेता है दैट वॉज द थिंग. और उसके अलावा एक और इनका ड्रामा आया था 2018 में खलिश के नाम से और फिर ऑब्वियसली जिसमें से मैंने आपको पहले कहा कि डेली पाकिस्तान में रिपोर्ट किया गया था कि फैसल कुरैशी हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट ऑफ टेलीविज़न और वो एक एपिसोड के लिए 2 मिलियन चार्ज कर रहे थे 2015 में ये उनका रिकॉर्ड था तो आई डोंट नो कि अब वो रिकॉर्ड मेंटेन्ड है कि नहीं लेकिन मतलब कि 2 मिलियन फॉर वन एपिसोड दैट इज़ लाइक आई कैन नॉट इवन इमेजिन कितने ज़ीरोज़ होंगे उसमें. तो वही वाली बात है कि वेन यू बिकम समबडी तो फिर आप अपने आप को ख़ुद भी आप अपने आप को वो अपने आप अपना नाम बना लेते हो और नाम के साथ साथ यू नो पीपल ऑल्सो नो कि आपने अगर फैसल कुरैशी को लेना है अपने ड्रामा के लिए तो ही इज़ अ कम्प्लीट पैकेज एंड यू वुडन हैव टू वरी कि अच्छा ये बंदा अच्छा एक्ट करेगा कि नहीं करेगा. तो आप यू नो हाथ खोल के ईजीली यूर सिटिंग कैसे चलो आई गिव हिम 2 मिलियन बिकॉज यू नो ही डिज़र्व्स इट. खैर मैंने फैसल कुरैशी से रिलेटेड बहुत सारी बातें कर ली हैं और इस तरह करते हैं म्यूजिकल ब्रेक पे चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक इन्जॉय करें और उसके बाद हम वापस आते हैं और फिर हम और डिस्कस करते हैं. तो स्टे ट्यून्ड टू FM 92.6 एंड वी विल बी राइट बैक.

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया है FM 92.6 UCB की दुनिया में फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में। आप लोग साथ साथ एंटरटेन होते हैं फातिमा अहमद की बातों से और फातिमा अहमद के टॉपिक से, और मेरी हमेशा ही कोशिश होती है मैं ऐसे आर्टिस्ट को लेकर आऊँ जिस पे लोग जो है ना सब कुछ छोड़ छाड़ के, नॉट सब कुछ छोड़ दें, खाना पीना साथ रखे, बिकॉज बींग लाहौरी इट इज़ वेरी स्केरी फॉर अस कि हम लोग यू नो खाना पीना छोड़ दें। तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। आप थोड़े बहुत स्नैक्स अपने साथ रखें, चाय शाय बना लिया करें, साथ बिस्किट्स पड़े होते हैं या फिर रस ही रख लिया करें, और वो लोग आप लोग साथ साथ वो इन्जॉय करें। और साथ साथ मैं आप लोगों को मतलब कि आर्टिस्ट से रिलेटेड बात सुनाऊंगी है। फैसल कुरैशी की बात करने से पहले हम लोग इस तरह करते हैं कि उनका डायलॉग सुनते हैं। उनका एक बहुत मशहूर ड्रामा था मैं और तुम, और ये कॉमेडी ड्रामा था, और इससे मतलब कि फनी जो उस टाइम पर स्पेसिफिकली ड्रामा जो था वो बहुत कम थे, तो इसलिए बहुत मशहूर हुआ था बिकॉज इट वॉज अ वेरी फनी एंड वेरी यंग स्टूपिड कॉमेडी, तो इसलिए बहुत मज़े का एक ड्रामा था। तो हाउ अबाउट यू गो एंड लिसन टू हिज डायलॉग्स, हिज वे ऑफ डिलीवरी, एंड देन विल बी राइट बैक, और हम लोग फैसल कुरैशी से बात रिलेटेड और बातें करेंगे।
1: खुदा की कसम यकीन ही नहीं आ रहा, सामने बैठे अल्लाह।
2: शेरी किधर है?
1: शेरी शेरी दबा रहे हैं उसको, वो आएगा थोड़ी देर में, मुझे कसम से यकीन नहीं आ रहा ऐसे मेरे सामने।
2: मैं क्या उठ जाऊँ?
1: नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं यूनुस भाई, क्या कर रहे हैं? बस बैठे ना आप प्लीज, हमारी पलकों पे बैठे, हमारे सर पे बैठे, ऐसी बात नहीं। नहीं क्यों जरूरत नहीं है, देखे आपने हमारी आवाम की जो ना सारी
2: पूरी कर दी है,
1: उम्मीद है कसम से, और इंडिया की तो आपने ईमान से
2: बस समझ है समझ
1: यू आर ग्रेट, आप क्रिकेटर है नजूम, दिल की बातें जान रहे हैं यार। नहीं यूनुस भाई, मैं कसम से मैं अब आपसे हम वी आर गुड फ्रेंड
2: जी, बिल्कुल क्यों नहीं,
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
0: हाँ जी, आप लोगों ने सुना फैसल कुरैशी की डायलॉग डिलीवरी, एंड मैं सुन रही थी साथ साथ, एंड आई वाज आल्सो इन्जॉइंग इट, क्योंकि ही प्लेड अ रोल के एक थोड़ा सा स्टूपिड सा लड़का होता है, एंड यू नो ही ऑलवेज ट्राइज अपनी तरफ से, ही इज़ मेकिंग सीरियस कन्वर्सेशन, लेकिन इट ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी समथिंग कॉमेडी। और मैं जब जॉट डाउन करी थी कि अच्छा मैं कौन सा डायलॉग फैसल कुरैशी का लेके जाऊँ, तो आई रियली वॉन्टेड कि मैं उनका कॉमेडी लेके जाऊँ, या बहुत एक्सट्रीम सीरियस डायलॉग कोई लेके जाऊँ, लेकिन मैंने एक्सट्रीम सीरियस डायलॉग इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवन हैज सीन इट, मैं और तुम एक पुराना ड्रामा है, एंड मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन पीपल हैव नॉट वॉच्ड इट, और आई रियली वांट देम कि वो देखें। और एक तो आपको जब आप पुराने ड्रामा देखते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ तो एवोल्यूशन नज़र आती है हमारे ड्रामाज में, कि कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँच गए हमारे ड्रामाज, और सिर्फ ये बात नहीं नज़र आती बल्कि आपको अपने एक्टर्स की सक्सेस का पता चलता है कि यू नो फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड एंड नाउ वेयर दे आर। और मैं और तुम का पार्ट टू भी बना था, लेकिन वही बात है कि जो चीज़ पार्ट वन में होती है ना, हर तरह की मूवीज़ में जब भी आप सीक्वल्स बनाना शुरू हो जाते हो, तो जो पार्ट पहले बात की होती है ना, सॉरी जो बात पहले पार्ट की होती है ना, वो कभी भी नेक्स्ट जो आपका सीक्वल होता है उसमें कभी भी वो चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि आपने ओरिजिनलिटी और आपने जो सारी मेहनत की होती है ना पार्ट वन में की होती, पार्ट टू में आप बस खींच रहे होते हो उसको। लेकिन मैं और तुम इज़ वन ऑफ दोज ड्रामाज, इनको इनकी जोड़ी जो है इनको भी इतना पसंद किया जाता है कि यू नो आपका आई सीन डिफरेंट शोज जिनमें इन दोनों को फिर भी अभी भी इकट्ठे बुलाया जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस के यू नो उनको उनकी जोड़ी जो है, हम लोग मेनली जो है मेल और फीमेल कपल्स को हम लोग जोड़ देते हैं ड्रामास में कि अच्छा दिस वॉज अ परफेक्ट कपल, लेकिन दिस वॉज समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज़ समथिंग कि वो अभी तक इतने अच्छे दोस्त हैं, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी नाइस एज वेल। खैर, इनकी हम पर्सनल लाइफ को हल्का सा टच करेंगे और इनकी पर्सनल लाइफ को हम डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताते चलें कि यू नो ही इज़ द सन ऑफ अ वेरी पॉपुलर मूवी एंड ड्रामा एक्ट्रेस, और उनकी वजह से ही बेसिकली उनकी जो मदर थी वो आती थी टीवी सेट्स पे, और तो वहाँ पे फिर वो साथ साथ आते थे और वहीं से उनको रिकग्निशन मिला और लोगों ने कहा अच्छा चलो इसको उनको एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट किसी स्पेसिफिकली ड्रामा में उन्होंने डाल दिया. तो खैर he was very young at the age of 18 when he got married, or you know that marriage didn't go well, so after 7 years he got divorced. Aur unki 6 years old ek beti hai, which is very cute. Obviously ab to badi ho gayi hai lekin she is very cute. Aur uske ilawa phir he got married when he was 28, and once again the marriage didn't go well, to phir he got divorced again. Aur phir uske baad us marriage se unka ek beta hai, and रिसेंटली जो उनका अभी तक जो लास्ट चल रही है वो उनकी थर्ड मैरिज है, और वो 2010 के बिगिनिंग में उन्होंने शादी की थी, और नाउ ही इज़ लिविंग इन कराची विद हिज मदर, हिज वाइफ एंड 18 ईयर्स ओल्ड डॉटर. अपना जो बेटा है ही लिव्स इन यूके, एंड यू नो जैसे मैंने पहले कहा कि उनके जो डिफरेंट फ्रेंड्स एक्टर की बात करें, उनके मैं और तुम में जो उनका पार्टनर था एजाज असलम, उनके साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है. उसके अलावा एक डायरेक्टर हैं बाबर जावेद, उनके साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, और लाइक इनको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स ही आप कह सकते हो. और उसके अलावा उनके वही बात है कि जब आपके आपने जब शुरू से कुछ स्पेसिफिक एक्टर्स के साथ काम किया हो, या फिर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कुछ स्पेसिफिक एक्टर्स के साथ किया हो, तो आपको जितना भी टाइम हो जाए वो आपके दोस्त ही बने रहते हैं. अब मैं चाहती हूँ कि हम लोग फैसल कुरैशी से हल्का सा ब्रेक लें, बिकॉज यू नो हम लोग डिस्कस करेंगे उनके अचीवमेंट्स वगैरह को भी, लेकिन अभी हम ब्रेक पर चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक पर, और उसके बाद हम वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड टू FM 92.6 एंड वी विल बी राइट बैक.
3: See ya!

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नई सोच, नई
1: सोच, एक नई पहचान,
0: एक नई लगन,
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
1: UCP No. 1, जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए, सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
4: हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सौरभ शम्स और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सुर कहानी। हमारे रीजन के म्यूजिक में एक बहुत मेजर रोल फीमेल आर्टिस्ट्स का रहा है। नूरजहां, आबिदा परवीन, नैयरा नूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले से लेकर आयमा बेग, श्रेया घोषाल, मोमिना मुस्तहसन तक ईस्टर्न म्यूजिक में फीमेल वॉइसेस को हमेशा बहुत अहमियत मिली है। एज अ फीमेल आर्टिस्ट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ग्रो करना एक बहुत मुश्किल काम है। नॉनदलेस, अभी जो मैंने नाम लिए हैं अलॉन्ग विद काउंटलेस नोर, उन्होंने अपनी आवाज और स्किल से पूरी दुनिया को अपना फैन बना लिया। As I have already told you before, मैं पिछले 14 साल से म्यूजिक की प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। Alongside me, my sister Tirza Shams has also been learning Eastern classical music under the guidance of Ustad Parvez Paris. My younger sister Tirza and I operate as a part of a musical duo called Magical Siblings. Tirza ने Eastern classical music की प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी शुरू की 13 साल पहले and is currently a student at NUST University. And she is also serving as the music secretary, or in other words, the vice president of the music society over there. Tirza ke saath, myself, I have made many original tracks with Tirza, and we've had a wonderful 14 years in music learning. And aaj I want to talk to Tirza about how in the music industry, ek female ko इम्पॉर्टेंस मिलती है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या एडवांटेजेस भी कोई हैं, एंड देर मस्ट बी सम थिंग्स दैट आर वे डिफरेंट देन व्हाट ए गाय इन द म्यूजिक इंडस्ट्री फॉलोज। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट मी वेलकम यू तिरजा टू द स्टूडियो। कैसे हो आप?
5: मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं?
4: हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तिरजा। अच्छा, सो तिरजू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट, एंड दिस इज समथिंग जो के हमारे सुनने वालों में जो भी फीमेल अपकमिंग म्यूजिक आर्टिस्ट्स हैं, दे मस्ट बी सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिशियंस जो के इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रही हैं। व्हाट डू यू थिंक, इज इट ईजी टू बी अ गर्ल, ए वुमन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री इन our region, in Pakistan, in India, like अगर हम इंडो पाक को एज अ होल लें, तो क्या एक लड़की के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में आना ईजी है?
5: I really love the question that you asked, especially considering कि हमारी जो एक local area है ना, it's very conservative. I myself, speaking very frankly, I'm very lucky कि मैं एक ऐसी family से हूँ, कि मैं एक ऐसे background में हूँ जहाँ पे my parents, my wider community, उनको इससे issue नहीं है कि एक लड़की stage पे जा रही है, एक लड़की एक audience के सामने खड़ी है, कोई काम कर रही है। But music industry के बारे में as a whole अगर हम बात करें, it's very scary being a woman. And the reason for that is कि अगर हम एक casual jam की, not अपना performance, not अपना production, not इस तरह की किसी चीज़, just के चार लोग बैठ के मिलके गाना गा रहे हैं, उसकी बात करें ना, तो the environment is usually something like कि दो लड़के खड़े होते हैं, उन्हें गिटार हाथ में पड़े होते हैं, वो एक दूसरे को देख के गाना बजा रहे होते हैं, उनके इर्द गिर्द एक सर्कल होता है जहाँ पे लोग मिल के गा रहे होते हैं, एंड दैट सर्कल इज यूजली फुल ऑफ अदर मैन। उस सिचुएशन के अंदर ना इज इट अप्रोप्रिएट, ना डज इट फील सेफ, एंड ना इज इट कंसिडर्ड टू बी लाइक डिसेंट फॉर वुमेन टू बी देयर। कि अगर इतने लड़कों के बीच में एक लड़की या दो लड़की खड़ी है, उसके लिए ये चीज इनडिसेंट कंसिडर्ड की जाती है कि वो उस सोशल स्पेस के अंदर हो। इसमें मसला ये होता है कि वुमेन आर ऑलरेडी वेरी फ्यू इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। आपके लिए रोल मॉडल्स बहुत कम होते हैं, आपके लिए बहुत गिने चुने औरतों का आपको पता होता है जो म्यूजिक में होती हैं, एंड एनीवन हु वांट्स टू कम फॉरवर्ड ऑलरेडी कम्स इन इट विद दैट सॉर्ट ऑफ वॉइस इन द बैक ऑफ हर हेड कि लोग क्या सोच रहे होंगे, कि ये क्या कह रहे होंगे, मेरे बारे में बात क्या हो रही होगी। सो दैट मेक्स इट रियली रियली हार्ड फॉर अ वुमन टू एंटर इनटू द इनिशियली, एंड दैट इज स्पीकिंग जस्ट फ्रॉम अ सोशल क्लाइमेट। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक इशू आई हैव सीन अमंग फ्रेंड्स, अमंग माय सोशल पीयर्स, इज दैट के लड़कियाँ अपनी फैमिलीज में ही म्यूजिक नहीं एक्सप्लोर कर पाती. आई वॉज वेरी लकी, आपने थोड़ा म्यूजिक स्टार्ट किया, मैंने कहा मैंने भी करना है, एंड आवर फैमिली वॉज इमीडिएटली लाइक आ जाओ करो, इफ दिस इज समथिंग यू लाइक डू इट. बट देर आर अ लॉट ऑफ फैमिलीज जहाँ पे इवन इफ अ ब्रदर इज लर्निंग द गिटार, इज परसुइंग म्यूजिक, इज डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इट इज स्टिल नॉट कंसिडर्ड राइट फॉर द डॉटर टू बी डूइंग द सेम. Because of this, a lot of girls feel less inclined towards learning. Isme ek chota sa unique challenge jo maine dekha hai is ke because there are a lot of stereotypes about women, ke like oh ladki agar music mein hai na wo sirf koi ladki hai jo thoda bahut ga sakti hai, usko koi gana bajana aata nahi hoga, usko koi theory aati nahi hogi, usko koi instrument aata nahi hoga, usko production aati nahi hogi. That is a very scary stereotype, because uske baad jab aap chahte ho na ki main ye cheez sikhu, ke main bahut saal, I remember I didn't want to learn the guitar because I was scared of being the woman who couldn't play it, who had it in her hands but was bad at it, because usse wahi stereotype badh jata hai. और उस स्टीरियोटाइप के डर से ही आप अंदर एंटर नहीं करते. सो दीज थिंग्स लाइक इवन दो इट मे नॉट बी समथिंग यू थिंक अबाउट अ लॉट, अ गर्ल हु इज स्टेपिंग इनटू द इंडस्ट्री और इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ इनटू इट, शी ऑलरेडी हैज दिस इन माइंड. इवन इफ समवन इज नॉट सेइंग इट टू हर डायरेक्टली और इफ इट्स नॉट समथिंग दैट्स एक्सप्लिसिटली बीइंग टोल्ड, ये चीजें उसके दिमाग में हमेशा होती हैं, एंड दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट एंड दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस टू इट.
0: Right.
5: So I think like when you talk about the unique challenges, these are some that I could just speak of from the top of my head.
0: You've raised some very important questions abhi idhar. Sabse pehle jo aapne baat ki ke jab itne sare mardon ke beech mein ek aurat khadi bhi ga rahi hoti hai to uske liye na wo safe hota hai na wo appropriate hota hai. So what do you think ke jab wahi ek ladki ek stage pe ga rahi hai, is the feeling the same?
5: I think it's very different because the initial stages of planning your performance are very similar. You sit in very informal spaces aur aap taiyari karte hain, right? So uske andar it's very similar ke like you feel very overcrowded. I think that's very good to describe that feeling. But jab aap stage pe jaate ho na, the spotlight is on you.
0: Right.
5: Audience jab aapko dekh bhi rahi hoti hai na, they're not looking at you as a man or a woman. They're not looking at you in terms of what is decent or indecent. They're looking at you as a performer. That is something जो मैंने बार बार स्टेज पे जाके सीखा है कि ऑन अ स्टेज यू आर अ कैरेक्टर, यू आर नॉट अ पर्सन. एंड दैट मे साउंड बैड मे बी लाइक इन सर्टेन लाइट्स, बट एज अ वुमन दैट्स वेरी फ्रीइंग.
0: नो आई अंडरस्टैंड कि एक स्टेज पे जब आप एज अ वुमन हो, योर बायो कैरेक्टर, आई थिंक यू व्हाट यू मीन टू से इज दैट यू आर अ परफॉर्मर.
5: एग्जैक्टली.
0: ठीक है, इट डजंट मैटर इफ यू आर अ मैन, यू आर अ वुमन, इफ व्हाटएवर सेक्स और जेंडर यू बिलोंग टू, व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर द ह्यूमन बीइंग दैट्स ऑन द स्टेज एंड हु इज ट्राइंग टू परफॉर्म समथिंग फॉर द ऑडियंस.
5: एंड द ऑडियंस इजंट लुकिंग फॉर के इफ यू आर अ मैन और अ वुमन, दे आर नॉट लुकिंग फॉर दैट, दे आर लुकिंग फॉर अ गुड टाइम ऑफ अ song that they like to hear it, to vibe with it, to have their own fun. Audience is a very selfish thing in that regard, but it acts as a very selfless thing for the performer, ke they don't care who you are, they only care about how you perform. And that is your full value in that moment.
0: That's a very wonderful point. Over here we'll take a small break, Tirza, and we'll continue with this topic after the break. I'm really loving this conversation and I really want ke hum isme aur thoda sa dig deep kare. This is Horib Shams, your host, and you're listening to FM 92.6 UCB ki duniya.

0: कि कुछ मजेदार चीज हुई है. सो दैट इज व्हाट
1: या सो समवन हु इज नॉट इवन ट्रेन्ड एट ऑल उसे भी ये पता है कि व्हाट गजल साउंड्स लाइक, व्हाट क्लासिकल साउंड्स लाइक, व्हाट rap sounds like, what hard rock sounds like. So usi tarah karte karte aista aista things are some or less norm in the society ban jati hai ek tarah se.
0: And this is not just like a local thing, rather aap dekhiye ki ab western songs they have a lot of eastern influences, right? Agar hum Sam Smith ka Unholy dekhte hain, while on surface it's a very western poppy song, but uski jo tunes hain they're very eastern inspired, right? Like that's just one example off the top of my head, but अब हमारी ट्यून्स, हमारी सुर आर बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू वेस्टर्न सॉन्ग्स. सो वी मे हैव लाइक आवर होम हिज बेस हियर, बट हमारे पास जो स्ट्रेंथ है
1: एग्जैक्टली अगर हम रैप का ही टॉपिक ले लें तो रैप वाज इनिशियली टेकन फ्रॉम द ब्लैक कम्युनिटी, बट अब उर्दू रैप भी आ रहा है, पंजाबी रैप भी आ रहा है. दैट्स अ स्टाइल जो कि उस ब्लैक कल्चर को लेके अब हमारे कल्चर में इंटीग्रेट हो गया. दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग जो कि आई थिंक अच्छा भी है, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे यू आर क्रिएटिंग समथिंग इंस्पायर्ड, बट इट्स नॉट अ कॉपी.
0: It's innovation.
1: You're exactly.
0: taking these other human elements and you're creating something new that only you could have created with the tools in your own arsenal.
1: Wonderful. Yahan pe we'll take a small little break, and after the break we'll continue with this topic. So this is Aurabh Shams and you're listening to FM 92.6 UCP Ki Duniya.

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। BTM

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
1: एक मंजिल मंशियात से पार, पाकिस्तान।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: And now, you are gonna listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
1: भूख चेहरे पे लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे हो गया चर्ख सितमगर का कलेजा ठंडा मर गए प्यास से दरिया के किनारे बच्चे बच्चे उम्मीद की किरण और जिंदगी की नवीद होते हैं इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे और जगमगाती आंखों से ख्वाब नजर आते हैं इनकी हंसने की झनकार हमारे चेहरों पर मुस्कान और घरों में रौनक बिखेर देती है इनकी नन्ही नन्ही शरारतें आपके अंदर जीने की उमंग पैदा करती हैं इन्हीं की वजह से आपके घर में रौनक और जीने का हुस्न नजर आता है ये नन्हे तारे बाज औकात आपके लिए मशले राह और जिंदगी गुजारने का मकसद बन जाते हैं बच्चे तो रयाकारी से पाक होते हैं लेकिन बाज औकात हालात रहन सहन और तर्ज जिंदगी इनको अपने अपने रंग में रंगती चली जाती है
2: हम सुबह सुबह घर से आ जाते हैं तो इधर आके हम शहर पे काम करते हैं हमारे घर का किराया नहीं पूरा होता इसीलिए किराया हम किराया दे नहीं सकते इसका किराया भी 5,000 रुपये हम चलो काम करते हैं हमारी मम्मी कहती है 1,000 रुपये चले जाओ फिर काम कर लो अब मजदूर है वो भी नहीं कर सकते इसलिए हम कुछ करके हम साथ में मिल के जो होता है हम करके आमदनी चला लेते हैं जो हम काम कर देते हैं ऊपर से पकड़ने वाले आए थे जो पैसे होते हैं वो ले जाते हैं और हम जो सारे दिन की मेहनत होती है उन पर पानी पेट जाते हैं जो भी होते तो हम फिर भी छोड़ देते हैं हमें हम कहते हैं अल्लाह का नाम है छोड़ दो हमें कोई की जब गाड़ी साफ कर रहे होते हैं तो कोई 10 रुपये कोई 20 देते कोई देता नहीं जो अच्छे लोग होते हैं वो दे जाते कोई देते नहीं इसलिए हम अल्लाह का शुक्र है कभी घर का सर्कट चल जाता है
1: और इसी तरह ये बच्चे नन्हे पौधे से तनावर दरख्त बनने के अमल से गुजरने लगते हैं जिंदगी की कश्मकश इन्हें फाइटर बना देती है दर दर की ठोकरें इनका मुकद्दर बन जाती हैं जिंदगी वक्त हालात और मजबूरियां कब इनके नन्हे नन्हे हाथों में खिलौनों की जगह अपने खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ थमा देती हैं इन्हें पता ही नहीं चलता जिंदगी से लड़ते लड़ते ये बच्चे जिंदगी का कितना बड़ा सबक सीख जाते हैं ये इनके सिवा कोई नहीं बता सकता
3: मेरे बब्बू फोत हो गया मैं अकेला ही घर का खर्चा पानी चलाता हूँ और मैं 10 रुपये मैं गुब्बारे पे 1 कड़ा अपना खर्चा चलाता हूँ और मैं पीछे से 5 रुपये का गुब्बारा लाता हूँ और आगे आके मैं 10 रुपये का गुब्बारा बेच देता हूँ इस तरह मुझे रोज के 40-50 गुब्बारे मेरे बिक जाते हैं जिसमें फिर मुझे 250 रुपये मुनाफा हो जाता है और मैं ला के अपनी अम्मी को दे देता हूँ मेरी अम्मी भी लोगों के घर में काम करती हैं इस तरह हम दोनों माँ बेटे कमाई करते हैं और हमारे घर का खर्चा पानी चल जाता है
1: ये वो बच्चे हैं जो वक्त से पहले ही वक्त और हालात का हर रंग और मौसम देख लेते हैं हालात की नामसादत इन पर जिम्मेदारियों का वो बोझ डाल देती है जिसके लिए वो ज़हनी, जिस्मानी और फितरी तौर पर तैयार भी नहीं होते लेकिन खानदान चलाने वाले गुर्बत के थपेड़े इनके हाथों में खिलौनों के बजाय मेहनत मजदूरी के आलात थमा देते हैं और इन्हें अपने वालदैन का हाथ बटाने के लिए जालिम बेहिस और बेरहम माशरे के दलदल में हाथ पांव मारकर अपने और अपने खानदान के बका का सामान करना होता है
4: मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी टांग टूट गई अब वो मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे मैं इस दुकान पे आया तो उस्ताद जी से मैंने कहा कि मैंने आपके पास काम करना है तो मुझे पढ़ाई का शौक था तो उस्ताद जी ने मेरे से वादा किया कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे तो मैं इधर काम करना शुरू कर दिया अब छुट्टियाँ हुई हैं मैं बड़ी मेहनत से काम करता हूँ सुबह पहले शाम को सिर्फ स्कूल से पढ़ने के बाद आता था अब मैं सुबह भी आ जाता हूँ और दिन सही मेहनत से काम करता हूँ आधे से ज़्यादा काम मैंने सीख लिया उस्ताद जी कहते हैं कि अब मैं जल्दी मैकेनिक बन जाऊँ
1: होना तो ये चाहिए कि माशरे ऐसे बच्चों के साथ हुस्ने सलूक करे इनसे इनकी इस्तेतात और जिस्मानी ताकतों के मुताबिक काम ले मगर इनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए इन्हें काम के बोझ तले ऐसा दबा दिया जाता है कि वो 12-16 घंटे तक मुसलसल मुशक्कत करते हैं। पूरा काम लेने के बावजूद कलील मुआवजा दिया जाता है। सितम जरीफी ये है कि इन्हें इज्जत देना तो दरकिनार इनके साथ हकारत आमेज सलूक किया जाता है। इनके नाम की सूरत में इनके वालिदैन ने इन्हें जो शनाख्त दी होती है वो भी इनसे छीन ली जाती है। इन्हें इंतहाई हकारत से पुकारा जाता है। ओए छोटे, एक ऐसा ही लफ्ज है जो इनकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गया है। इन्हें इस नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा भी नहीं जाता। इस नाम में इज्जत से कई ज्यादा तहकीर का पहलू पोशीदा है। क्या आपने कभी सोचा है जिन्हें आप ओए छोटे कहकर पुकारते हैं, क्या ये मुनासिब है? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे को, जिसका नाम आपने इसकी पैदाइश के वक्त बड़े दुलार और प्यार से रखा था, उसे कोई धुतकारते हुए अल्फाज से पुकारे? नहीं ना, तो एक पल सोचिएगा जरूर कि इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये छोटे मेरे और आपके आसपास हर वक्त हर जगह मिल जाते हैं। कचरे की बोरियां उठाए, पॉलिश का सामान लिए, फ्रूट बेचते, सड़कों पर टोकरियां लिए, बाजारों में शॉपर उठाते, मोटर मैकेनिक्स के पास, पंक्चर लगाने वाले के पास, इन बच्चों ने एक पूरे खानदान को अपने कमजोर जिस्म, पुर अज़्म, हिम्मत और हौसले के पीछे पनाह दी होती है। ऐ छोटे की सदा लगाने से पहले बस एक लम्हा, एक लहज ये जहन में याद कर लें कि ये किसी घर के वाहिद बड़े हैं और बड़ों का एहतराम हमें सिखाया गया है। नाबालिग बच्चों का रोजी के हसूल के लिए काम करना चाइल्ड लेबर कहलाता है। बच्चों के काम करने की जो सबसे बड़ी वजह देखने में आई है वो गुर्बत है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में इन मजदूरी करने वाले बच्चों के वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को बाआसानी तालीम दिला सकें। बच्चों से इनकी बचपन की खुशियां छीन कर इनसे मशक्कत वाला काम लेना इनकी जात के लिए जहनी, जिस्मानी, समाजी और इखलाकी तौर पर इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, इस उम्र में इन मासूम हाथों में भारी औजार और होटल के बर्तन थमा दिए जाते हैं।
5: मेरे पापा फौत हो गए हैं, मेरी मामा ने दूसरी शादी कर ली है और मैं होटल में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शाम को 300 रुपया मिल जाता है। उनमें से मैं अपनी छोटी बहनों के लिए खाने की चीज़ें और दूध वगैरह लेके जाता हूँ, जिसे खाकर वो खुश होती हैं और मुझे भी खुशी महसूस होती है।
1: इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, अफलास की बस्ती में जाके देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। अफराते जर भी बच्चों को मजदूरी करने तक लाने की एक अहम वजह है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में बच्चों के या घरेलू अखराजात पूरे नहीं होते तो मजबूरन वालिदैन को बच्चों को काम करने पर भेजना पड़ता है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन हर साल 12 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों को काम करने से रोकना है। कानून बनाने वाले महलों में बैठकर कानून वजा करते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि असल मसला चाइल्ड लेबर का नहीं बल्कि मुल्क में माशी सूरतेहाल का है, जिसमें करप्शन, रिश्वत और दिन ब दिन बढ़ते हुए टैक्सेस एक अहम मसला है।
6: वहाँ 1,30,00,000 अफराद खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इफलास की सूरत हाल है कि लोगों को खाने पीने की चीजें मुयसर नहीं है, तो उसमें फिर हमारा शुमार कतार कहाँ, फिर हमारा मुल्क तो वैसे ही कर्जों पे चलने वाला।
1: कौन सी ममता है जो अपने जिगर के टुकड़े को मजदूरी करने वाले औजार थमाए मगर पेट की भूख और माशरे का तल्ख रवैया इंसान को इस नहज पर ला खड़ा कर देता है कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाता है। एक इंसान होने के नाते हम इस बात के कैसे हामी हो सकते हैं कि फूल से मासूम बच्चों के हाथ काम करते हुए आबलों से भर जाएं? मगर किसी गरीब का गंदगी के ढेर से निवाला तलाश करना भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: Admissions open for Fall 2026. Create, communicate and inspire with Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab. We are offering MS Film and Digital Media, MS Advertising in PR, MPhil Media and Communication. We are also offering different scholarships for UCP alumni, 75% fee concession on 3.8 CGPA, 50% fee concession on 3.5 CGPA, 25% fee concession on 3.0 CGPA. Merit scholarships are also available. 75% fee concession on 3.8 CGPA, 50% fee concession on 3.6 CGPA, and 50% fee concession for teachers and media professionals. So what are you waiting for? Contact us at 080-000-827 or apply on admissions@ucp.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.
1: Ek naya andaaz,
2: ek nayi soch,
1: ek nayi pehchan,
2: ek nayi lagan.
1: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
2: यूसीपी की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।
3: फैकल्टी आर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन अब्बास और आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस से है। मैं बात कर रहा हूँ सर उमर शौर की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
4: वालेकुम सलाम बेटा, आई एम फाइन, आप बताएं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज की फैकल्टी को ज्वाइन आपने किस तरह से किया और क्या है आपका बैकग्राउंड?
4: जी मैं फिलहाल जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर प्रिंसिपल लेक्चरर सर्व कर रहा हूँ, रेंडरिंग माई सर्विसेज। और जहाँ तक दर्स व तदरीस के पेशे से मुंसलिक होने का ताल्लुक है तो मैंने अपना जो ये तालीमी सफ़र है, एज मैं अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ बेशक के मैं पढ़ाने से मुंसलिक हूँ, वो 2008 से स्टार्ट किया।
3: 2008 से
4: और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लाहौर की मैं पढ़ाता रहा हूँ, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, UMT, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। ये माजी में मैं इन जो है तालीमी इदारों से मुंसलिक रहा हूँ और मेरी एक्सपर्टीज जो है वो दो डोमेन्स में है, एक फिलोसफी के अंदर है, दूसरा मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर। तो अब तकरीबन जो है मेरा टोटल जो तजर्बा है वो तकरीबन 15-16 साल का हो चुका है और 15-16 साल से मैं दरसो तदरीस के पेशे से मुंसलिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। UCP का ताल्लुक भी मेरा बहुत पुराना है, मैं यहाँ का एलुमिनाई भी रहा हूँ और 2010 से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ विजिटिंग कैपेसिटी।
3: सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका UCP में पढ़ाने के दौरान?
4: UCP अल्हम्दुलिल्लाह एक प्राइवेट और निजी इदारों के अंदर ये अपना एक नाम रखता है, एक मुकाम रखता है और इसमें बहुत सारे ऐसे मुस्बत पहलू हैं जिसे हम हाईलाइट कर सकते हैं, खासकर फैसिलिटीज के लिहाज से, स्टूडेंट के लिहाज से। माई सेल्फ इज अ स्टूडेंट वे बैक इन 2005-08 जब मैंने MBA यहाँ से किया और उसके बाद फिर
3: MBA से UCP।
4: जी और फिर जब मैंने इवन MSP अपना यहाँ से कंप्लीट किया मैनेजमेंट साइंसेस में, तो UCP अपनी जो है फैसिलिटीज और जो प्रो स्टूडेंट पॉलिसीज के स्टूडेंट बॉडी को फैसिलिटेट करने के लिहाज से ये अपने आप में एक नाम है और इसी तरह से क्वालिटी एजुकेशन प्रोड्यूस करने में भी इसका कोई दूसरा सानी नहीं नजर आता, खास करने चाहिए इदारों के अंदर। और इवन अगर मैं आपको बताऊं कि जो पब्लिक अदारे हैं उसके अंदर भी इनका अगर हम UCP का मुवाजना करें तो इनका तालीमी मयार जो है, जो ये स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इनकी ओवरऑल फैकल्टी है, जो इनकी ओवरऑल फैसिलिटीज हैं जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर रियली अनमैच्ड, वो वाकई काबिले जिक्र है। और यानी क्वालिटी एजुकेशन और प्राइस वैल्यू ऑफ मनी
3: तो है,
4: ये चीज मिलती है और उसका एक जो है नतीजतन हम यहाँ बैठे हुए हैं और स्टूडेंट और एक प्रोग्राम कर रहे हैं
3: जिसे
4: आप ये देखें कि आपको इवन मार्केट में भी जाएंगे तो हर तीसरा चौथा बच्चा UCP के आपको
3: नो डाउट सर
4: लोगों से मिलेगा। इसका मतलब देखें कि मार्केट पेनिट्रेशन कितनी जबरदस्त है इनकी, तो अगर क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चे जो है इनके बरसरे रोजगार है और मार्केट में इनका एक माशाल्लाह नाम है।
3: सर, यूसीपी अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा भी पॉलिश करती होती है डिफरेंट स्किल्स में और डिफरेंट फैकल्टी से भी,
4: नो डाउट।
3: तो सर, मेरा पहला सवाल है आपसे जो कि मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि फलसफा क्या है और उसकी तालीम क्यों जरूरी है। आपको लगता है कि फलसफा की तालीम लेना जरूरी है इस दौर में जो कि एक डिजिटल मीडिया वर्ल्ड है?
4: देखिए बेटा, बात यह है कि फलसफे की तालीम नागजीर है, इट इज समथिंग विच इज इंडिस्पेंसिबल। फलसफा आपको बेसिक प्रोवाइड करता है जिंदगी की। अगर आप फलसफे को एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर अगर हम दो मिनट के लिए समझें कि इस सब्जेक्ट को हम रख दें, जो कि आम फहम लोगों को यही लगता है, जो कि अभी आपका सवाल है कि पता नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत रिडंडेंट है, बहुत इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है, आज की दुनिया में क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी क्या तालीमी ज़रूरी है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप किसी चीज़ की ABC को ही ख़त्म कर दें तो उसकी ABC को ख़त्म किया जा सकता है? नहीं। सवाल आंसर होगा कि आपके बेसिक्स को तो नहीं ख़त्म कर सकते। तो जो सोच के फंडामेंटल्स हैं जो आपकी थॉट के, अगर उसमें से फलसफा नहीं होगा, उसकी बुनियाद फलसफियाना स्लूप के ऊपर नहीं, जिसे कहते हैं, इरेक्ट की जाएगी, तो आपकी जिंदगी आप ऐसे ही समझें कि आपकी जिंदगी एक वाइल्ड गूस चेस के मुतरादिफ होगी, यानी कि बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपकी जो एग्जिस्टेंस है, जो आपका वजूद है, वो एनिमल लेवल की एग्जिस्टेंस आपकी हो जाएगी, क्योंकि फिलोसफी एकेडमिकली इज बीइंग ट्रीटेड एज मदर ऑफ नॉलेज। इसको उम्मुल अलूम कहा जाता है,
3: उम्मुल अलूम
4: मदर ऑफ नॉलेज, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो इसलिए किया जाता है कि फलसफा ख्यालात, फलसफे की इब्तिदा इंसानी तजस्सुस से होती है। अब इंसानी तजस्सुस क्या आजकल खत्म हो गया?
3: सर, इसे ख्यालात का मजमुआ भी कहा जा सकता है।
4: ख्यालात का मजमुआ, आप हजारों साल पहले देख लें, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इंसान की वही हैं जो आज भी हैं। मौत का अलमिया, जिंदगी, माजी के पछतावे, मुस्तकबिल के अंदेशे, इनमें आपकी पूरी जिंदगी घिरी हुई है। इंसान, दुख, बीमारी, ट्रेजिडी, वही अलमिया जो इंसान की जिंदगी को हजारों साल से घेरे हुए, वो अलमिया इंसान का आज भी है। तो इन अलमियों का जवाब फलसफा देता है इंसान को। इंसान की जो मकसदियत है इंसान की जिंदगी की, उसको इंसान से रोशनास कराता है, वो है फलसफे का इलम। तो फलसफे का इलम इंसान को बेसिकली अकल बालग, जिसे हम उर्फ आम में कहते हैं कि मेच्योर इंसान, किसी भी आप प्रोफेशन का हिस्सा बने, अ मेच्योर पर्सन इज सपोज टू बी लाइकली वेलकम्ड, ठीक है, उसको पसंद किया जाता है, लोग उसको समझते हैं कि जिसकी जो थॉट की मेच्योरिटी है, इससे वो एक माशरे में फाल करदार अदा कर सकता है। तो उसकी बेसिक बुनियाद ये है कि अगर आपने फलसफा पढ़ा हुआ है अपने इल्मी लिहाज से, आपकी सोच के अंदर एक बलूगत पाई जाती है, आप चीज़ों को हैंडल उस मेच्योरिटी से करते हैं, इसका बहुत हद तक ताल्लुक आपके एकेडमिक्स के साथ है, और उसमें फलसफे का सब्जेक्ट नागजीर है। बेशक ये फॉर द टाइम बीइंग आपको कोई एकदम से पैसा कमाने का वो नहीं जरिया बता देता, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें दोबारा इस बात पर तदब्बर करनी पड़ेगी, क्या इंसानी जिंदगी और इंसानी तालीम का सिर्फ मकसद पैसा कमाना ही है? आप किसी भी दुनिया के खित्ते में अगर ये सवाल उठाएंगे कि क्या सिर्फ तालीम और इलम का मकसद पैसा कमाना है, तो आपको एक सीरियस जवाब की सूरत में ये मिलेगा कि बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या है, एक अच्छे इंसान की परवरिश और एक इंसान को माशरे में एक फाल करदार निभाना चाहिए, और उसकी बुनियाद के लिए फलसफे की तालीम इंतहाई जरूरी है।
3: सर, मैं आपके बात से बिल्कुल एग्री हूँ, एग्री कर भी रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि हम कैसे एक नए स्टूडेंट को कहें कि जी आप फिलोसफी की तरफ, फलसफे की तरफ चले जाओ, इस सब्जेक्ट को छोड़ दो, या किस तरह वो अपना इंटरेस्ट इसमें डेवलप करेगा?
4: देखिए, फलसफे का इंटरेस्ट जो डेवलप होता है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जो जो आप अपनी उम्र के डिफरेंट हिस्सों से गुजरते हैं
3: जी,
4: आपके अंदर कुछ सवाल खुद अद्भुत तरीके से पैदा होते हैं। ये जिंदगी क्या है, मेरे जिंदगी में आने का मकसद क्या है, क्या ये जो मौत है बस ये जिंदगी का मेरी एंड है, या जो दुनिया में बहुत सारे मसाइब और अलाम हैं, कहीं लोग बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, कहीं लोग एब्जेक्ट पावर्टी का हिस्सा हैं, ठीक है, कहीं लोगों को बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिल रही, पीपल आर रियली टॉटरिंग फॉर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। तो ये तमाम चीजें जो हालात और वाकयात हैं, ये इंसान के अंदर एक थॉट डेवलप करती है,
3: गहरा असर, मतलब,
4: और यही गहरा असर फलसफे की इब्तिदा है मेरा बेटा। यही चीजें एकेडमिकली फलसफा इन्हीं चीजों की तलाश करता है, इन्हीं सवालात, फलसफे के अंदर बहुत सारे सवालात हैं और बहुत कम जवाबात हैं।
3: जी,
4: आप देखें, आप यहाँ पर बैठे हुए, इसकी हम एक तशबी जोड़ देते हैं, हम एक अच्छी एनवायरमेंट में बैठ के आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ,
3: बिल्कुल
4: बैठे बैठे ہمارے سامنے فلسطین اور پلسطین کی اگزامپل ہے، پورا کا پورا شہر تباہ ہو گیا غزہ، وہ بھی بالکل کنٹمپریری ورلڈ میں تمام فیسلٹیز کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ تو یکا یک جب انسان کے اندر ایک زندگی میں اتار اور چڑھاؤ آتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو دنیا کے اندر ہمارے سامنے گرد و نواح میں موجود ہیں، یہ ہمارے اندر ایک سوچ کی ابتدا کرتی ہیں، یعنی ہمارے اندر ایک سوچ پیدا کرتی
3: ہے، ہم اسے کہتے ہیں ڈیولپنگ آف نیو تھنگز۔
4: جی، اور یہی سوچ فلسفہ ہے، اور ان سوچ کے ذریعے سے ان ادبھت حقیقتوں کا، ان مشکل اور پیچیدہ مسائل کا حل تلاش کرنا فلسفہ ہے۔ فلسفے کے میں مسائل آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کیا ہے۔ جب آپ کے اندر سوچ آتی ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے جو میں علم پڑھ رہا ہوں اس کی بنیاد کیا ہے، جو علم ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، میری وجود کی اپنی حقیقت کیا ہے، اور سب سے بڑی بات جس چیز کی میں پرستش کرتا ہوں، جس چیز کی میں پرستش کرتا ہوں اس کا اپنا کیا وجود ہے، کیا مجھے اس کی پرستش کرنی بھی چاہیے یا نہیں، کیا وہ موجود ہے یا نہیں۔ یہ تمام سوچ اور یہ تمام سوال انسانی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ فلسفہ انہی چیزوں کی اکیڈیمکلی آنسر ہمیں دینے کی کوشش کرتا ہے۔
3: جی ٹھیک ہے سر، دوسرے سوال کی طرف جانب میں جاؤں گا کہ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلسفہ اور مذہب یہ دونوں مل کے معاشرے میں کوئی ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں؟
4: جی یہ بہت ہی آپ نے اچھا اور ایک گہرا سوال کیا ہے، کیونکہ عوام الناس کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، خاص کر ہمارے ماحول کے اندر، کہ شاید فلسفہ آپ کو لادینیت کی طرف لے جاتا ہے، فلسفہ آپ کو مذہب سے بیگانہ کر دیتا ہے۔
3: سر میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے جو فلسفہ پڑھ کے ایتھیسزم کی طرف جا رہے ہیں، ایتھیسٹ بن چکے ہیں۔
4: بالکل درست آپ فرما رہے ہیں، ایسا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے علم کے آگے کہاں پر بیریئر لگا دیتے ہیں۔ دیٹ از دا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ فلسفے کا مقصد بھی حقیقت کی تلاش اور جستجو ہے، مذہب کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہاں دونوں کی تھوڑا سا طریقہ کار اور میتھڈ میں فرق ہے۔ مذہب ایک حد تک عقل کا ضرور سہارا لیتا ہے اور اس کے بعد ایمان کی بات کرتا ہے،
3: بے شک،
4: اور اس کی بات ایمان کی بات کرتا ہے۔ فلسفہ بھی عقل اور مشاہدے کی بات کرتا ہے، لیکن اس کا ٹوٹل آربٹ عقل اور مشاہدے کے اوپر ہی نربھر ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عقل اور مشاہدے کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، انسانی عقل اور انسانی مشاہدے کی بھی اپنی لمیٹیشن ہے، اور اس بات کو بھی کسی مذہبی بندے نے ہائی لائٹ نہیں کیا، فلسفیوں نے ہی ہائی لائٹ کیا۔ آپ کی عقل ایک حد سے زیادہ چیزوں کو سوچ نہیں سکتی۔
3: سر پھر کیوں لوگ اپنے عقل پر قابو رکھتے ہوئے مطلب ایسے آگے ویز کی طرف چلے جاتے ہیں جس کا
4: مجھے یہ لگتا ہے، میری اپنی دانس کے اندر یہ بات ہے کہ لوگوں کی کام علمی ہے، لوگ جب
3: شعور کام ہے،
4: شعور کام ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ انسان کا ایک اپنا قلبی رجحان بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے ہی سے کچھ چیزیں سوچ رکھی ہیں کہ میرا ایک رجحان ہے لادینیت کی طرف، تو آپ وہ تمام حقائق کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑیں گے جو واقعی آپ کو لادین بنانے گی، جو آپ کو ایتھیزم کی طرف لے کے جائے گی۔ میں نے آپ کو پھر بتایا قلبی رجحان، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں اکثر جو خارج میں حقائق پائے جاتے ہیں، اور ایک انسان کا قلبی رجحان بھی ہے۔ انسان کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جس طرف وہ ایک قلبی رجحان رکھتا ہے، وہ حقائق کو اس اپنے قلبی رجحان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے،
3: اس کے مطابق ڈال جاتا ہے،
4: اس کے مطابق۔ تو اگر ایک بندے کا پہلے ہی مذہب بیزاری طبیعت ہے، وہ مذہب کو پسند نہیں کرتا، تو وہ سارے وہ حقائق جوڑنے کی کوشش کرے گا جو اس سے وہ یہ پروف کرنے کی کوشش کرے گا شاید مذہب نامی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی،
3: مذہب سے جدا کرتا
4: ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک نیوٹرل آسپیکٹ لے کر، ہمیں اپنے ایک معتدل رویہ رکھ کے چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور فلسفہ آپ کو بہت حد تک وہ ذہن کی اور وہ سوچ کی بلوغت بخشتا ہے، آپ کے اندر وسعت قلب پیدا کرتا ہے، جس سے آپ تدبر، کمپوئر، جو ہمارے معاشرے میں خاص کر تحمل اور بردباری کا بہت فقدان پایا جاتا ہے، ہم بات کم کرتے ہیں اور جھگڑتے زیادہ ہیں، ہمیں گفتگو کا بھی معیار نہیں پتا کہ ہمیں گفتگو کیسے کرنی۔ آج کے معاشرے میں سب سے دوسرا مشکل کام گفتگو ہے،
3: ہر چیز کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے،
4: سٹینڈرڈ سیٹ۔ تو گفتگو کیسے کرنی ہے، گفتگو کے آداب کیا ہیں؟ فلسفے کی ایک بہت بڑی برانچ اخلاقیات ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر ایک معاشرہ بغیر اخلاقیات کے ہو تو وہ معاشرہ بالکل، ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جانوروں کا معاشرہ ہے۔ تو کس حد تک ضروری ہے، کیونکہ فلسفہ آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے۔
3: لسنرز، اسی کے ساتھ ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ، اور مزید سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ سنتے رہیے FM 92.6 UCB کی دنیا۔

0: जबान के बारे में इलम होता है ना और चीजों के बारे में आता है, और वो शॉर्टकट है, शॉर्टकट
1: बस गेमिंग में बचे चले गए हैं और फिलोसफी से तो उनका दूर दूर का कोई तल्लुक नहीं है।
0: इलम से फलसफे से ला ताल्लुक का मतलब है कि वो इलम से ही दूर होते जा।
1: बिल्कुल सर, इसी के साथ सबसे जो एक अहम सवाल है मेरा कि फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी और सोशल साइंसेज यूसीपी में क्या इकदाम कर रही है।
0: देखिए यूसीपी का मैंने आपको जैसे बताया मेरा ताल्लुक पढ़ाने का अगर है तो 2010 से मैं इन लोगों के साथ मुंसलिक हूँ
1: जी,
0: ठीक है, और बहुत मैंने अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटीज देखी। ये ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का डिपार्टमेंट मेरे सामने डेवलप हुआ, पहले सिर्फ इसमें अदब और लिटरेचर और लैंग्वेज और लिटरेचर का डिपार्टमेंट था।
1: इनकी वर्किंग के बारे में सर जरा,
0: और डॉक्टर फहमीदा तब हमारी डीन थी, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा बाय लीव्स एंड बाउंड्स प्रोग्रेस किया। सबसे खूबसूरती इस बात की है कि इन्होंने महदूद नहीं रहने दिया ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज को, बल्कि नफ्सियात साइकोलॉजी को ऐड किया। आज पॉलिटिक्स एंड आईआर का डिपार्टमेंट इनका है, इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट इनका है, पॉलिटिकल साइंस का हुआ है। तो ये इस चीज़ की जिंदा मिसाल है कि ये तरक्की कर रहे हैं इस मामले में, ठीक है। ये जो है बहुत सारे डिफरेंट शोबाजात को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अंडर द एम्बिट ऑफ क्वालिटीज ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज लेकर आ रहे हैं। और फलसफे की जहाँ तक तरवीज का ताल्लुक है उसमें खूबसूरती ये पाई जाती है कि जी उन्होंने मनवान जो HEC की पॉलिसी है उसको अप्लाई किया हुआ है। हम फलसफे का जो कोर्स है एज अ माइनर कोर्स डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर ऑफर कर रहे हैं, ठीक है।
1: अब तो ये मीडिया फैकल्टी में भी
0: मीडिया फैकल्टी के अंदर जो है वो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फिलॉसफी का कोर्स है, पॉलिटिक्स एंड आईआर के अंदर है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर है, इकोनॉमिक्स के अंदर है, साइकोलॉजी में है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। तो एज अ माइनर कोर्स फिलहाल यूसीपी की एक जो है बहुत बड़ी काविश है कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, और उस पढ़ाने के अंदर सिर्फ पेपर पास कराना मकसद नहीं होता बल्कि उनको ज़िंदगी के उन हकायक से आशनाई दी जाती है ताकि उनके अंदर एक अपनी वुसअत नज़री पैदा हो और एक मैच्योरिटी ऑफ थॉट के साथ वो मामला फहमी कर सके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस की फैकल्टी की एक अच्छी काविश है कि उन्होंने इसके फ़रोग के लिए, फ़लसफे के फ़रोग के लिए एज अ माइनर सब्जेक्ट इसको वो डिफरेंट डिसिप्लिनस के अंदर, डिफरेंट कोर्स प्रोग्राम्स के अंदर ऑफरिंग दे रहे हैं।
1: तो लिसनर्स, ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें सर उमर शौर ने हमें फ़लसफे के बारे में बताया और उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपने कीमती वक्त दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।
0: बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदु किया इज्जत अफजाई के लिए, मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ, थैंक यू वेरी मच।
1: मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यू गेस्ट के साथ, सुनते रहिए FM 92.6 UCP के लिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP Ki Duniya.

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: मट्टी का है बाबा तू, तेरी किस्मत एक सफर।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन,
1: नई लगन।
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।